गुरु प्रसाद सुपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावै है सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जीत माड़े जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घड़ घड़ अंतर सरम निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक भिखारी जी सब तेरी चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवा है जो सेवा है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावै है हर त्यावै है तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से मुक्त

अनंता तेरी अनक कर है पूजा जी तप तप जपै बेअंता तेरे अनेक पढ़ बसिमृत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुझे बड़े अवरण कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुदे आपे भावै सोई वर्त जी तू आपे कर है सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सृज सब गोई।

सिमट पर शंकर काठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम पव, आदि जुगाद स्वरूप सजम पव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बर सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तव सरणी परे, तिनके दोष दुख हम मरे, पुरख जमन पग भरे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट न है, अच्छा होता ही सब कला, दुष्ट अरिष्ट टरा तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुट छान छबस कर न कोई, एक बार जिनत मैं संभारा, काल फास्ते ताहि बारा,

दोहरा, जब आयस प्रभु को पयो जन्म तना जग आए। अब मैं कथा सुन छिपते सब हूँ कहत सुनाई का बाच दोहरा। ठाट पयो मैं जोर करू बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याय है संत। अंत लहंगे मुक्त फल पावहंगे भगवंत दोहरा। कालपुर की देह मो कोटक बिशन महेशो कोटिंदर ब्रह्मा के तय राक्षस करोर जलेश दोहरा।

जुग जुग एको वे सोवे का भाई जुक्त वे आय चले प्रवाण। एक संसारी एक भंडारी कलाई दी बाण जब भावै तब चलावै जब हुआ फुरमाण हो वेख ओ नानद न्यावै बहुत एहो विड़ाण। आदेश तस्सा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जब जुग एको वे सो आसन लोए लोए भंडारो जो किच पाया सो एका बार। कर कर वेखै सिर जनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तस आदेश आद नीला नाद अनाहत जग जुग एको वेस। एक दूजी बो लख होए लख वै लख वीस लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीश इतराह पत पड़िया चढ़िया होया केस। सुन गल्ला या काश की कीटा आयरी सह नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर च पहना जोर जोर न मंगण देर न जोर जोर न जीवन मरण है जोर। जो न राज बाल मन सोर जो न सुरती ज्ञान विचारू जो न जुगती छुट्ट संसार। जिस हथ जोर कर विखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस बीज जी जुप के रंग तिनके नाम कारण तो करमी करमी हो विचार सचा आप सचा दरबार तै सोहन पंच परवार नदरी कर्म पवैनी सारण कच पकाई उथ पाए नानक गया जाप जाए। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का अख कर्म कीति पावन पाणी वैसंतर कीति कान महेश कीति ब्रह्मे घाट घड़िया हरूप रंग के वेस। किति आकर भूमि मिर किते किते धूप देसो किते इंद चांद सुर किते किते मंडल देसो किते सिद्ध बुद्ध नाथ किते किते देवी वेस। किते देव दान मुन किते किते रत्न समंदो किति अखाणी किति बाणी किते पात नरेंदो किति असुरति सेवक किते नानक अंत नंत ज्ञान कण मह ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद सर्मखंड की बाणी रूप तै घाड़ घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गलां कथिया ना जाहे जे को कह पिछा पछताए तिथै घड़िया सुरत मत मन बोधो तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सोधो कर्म कण की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महामल सूर। तिन मह राम रहे भरपूर तिथै सीतो सीता महमा बाहे ताके रूप नकत ने जाहे। ना ओहि मरहै न ठागे जाहे जिनका राम सह मन माहि तिथै भगत वसै के लोक करहे आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार कर कर विखै नद निहाल तिथै खंड मंडल पर भांडो जे को कथा तै अंत न अंत तिथै लो अलो आकार जिव जिव हुकुम तवत विकार। विखै विगसै कर विचारु नानक कथनां करडाउ सारु जात पहारो धीर सुनियारु आहरण मत वेद हथियार भौ खलंग तपताउ भांडा भौ अमृत तित्र ढाल। घड़िया शब्द सच्ची टकसालो जिनको नदर कर्म तिनकारु नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिताउ माता धरत महाते। दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचा धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत कहाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।

मूल कछ भेद न जान तो महादेव को कहत सदा सेव। निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध हजीती वर्णत पहन पहन थोए तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहे विदिश जा प्रथम संसारा।

कहू सिमट भय शंकर का था। शिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आदि जुगाद स्वरूप सुजंपम। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वर्ग सिख संघरो दोठ जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दोष दुख तो हमरे। पुरख जम भगमरे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार त्याए है ताकि काल निक न है रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट रह टरंत काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मैं हर हो। रिद सिद्ध कर्म सब होई दुठ चा छिप सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास तेता हमारा। जिन नर नाम तिहारू कहा दर्द दुर दुख ते रहा। खड़ग कीत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो बारी। सर्व ठोर मोहो हो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माताओ ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राताओ। किल बिक सकल देह को हरताओ दुष्ट दुखी अनुको छह करता। श्री अस तो जो जपय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्कालाओ। मन बांछत फल पावे सोई दुख नत सबे अपत कोई अड़ेल।

हर रास मेरी मर मन जा रहा, हर रास मेरी मर मन जा रहा, सतगुर तेरा जानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह खट्टे हो दिहाड़ी। एहो हर तन एहो तन तन मिलिया जनहरा पे पाड़ा, कह नानक हर रास मेरी मन होवा बन जा रहा।

रूपनगरी आया, हर रूपनगरी आया, गुरप्रसादी बुझिया जा वेखा, हर एक है हर बिन अवरण कोई। कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुरु मिलिया देव दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो साचा, ए सुन नैनू पठाए, साचा सुन नैनू पठाए, स्त्री लाए। सुन सतबाणी जित सुनी, मन तन हरिया हो वरसना रस माणी, सचे लख वडाणी ता की गत कही ना जाए। कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो, बहु साचा सुन नैनू पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पावन वजाया, वजाया वाजा पावन। नौ द्वारे प्रगट किए, दसवा गुप्त रखाया, गुरप्रसादी गुरप द्वारे लाए पावनी, एक ना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाओ नव निद, तिसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारा, जियो गुफा अंदर राखै वाजा पावन वजाया। एहो साचा सोहेला, साचा घर गाबो हो गाबो ता, सोहेला घर साचा जिथै सदा सच धियावे।

संत नानक गुर चरण लागी बाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: लोक शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत एक शब्द
1: सर्व शब्द एक समझे कुछ जाने पे ओ नानक था का दास है सोई नंजन दियो महला दूजा।

तेरा वास स्वामी, हम जनता तू पुरख जनतनी, जन नानक के प्रभ करते स्वामी, ज्यों पावै तिवै बुलैनी। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माना, प्रतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कह सेवक जन माना, प्रतख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, साध की सच टह

अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होव परमगत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। माज महला तीजा। तेरी आ खाणी तेरी आ बाणी बिन नावै सब भरम भुलाणी। गुरसेवा ते हर नाम पाया बिन सतगुर कोय न पावणिया। हो वारी जियो वारी हर सेती चित लावणिया। हर सच्चा गुर भगती पाई है सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब किश पाए। जेही मनसा कर लागै तेहा फल पाए। सतगुर दाता सबना वथू का पूरा भाग मिलावणिया। एहो मन मैला एक ना त्याए अंतर मैल लागी बहु दूजै पाए। तट तीर्थ दिसंतर भवै अहंकारी होर वधेरै हूं मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए जीवत मरै हर स्यो चित लाए। हर निर्मल सच मैल न लागै सच लागै मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंध गुबारा ज्ञानी अंधा अंधा अंधारा। बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमाव है फिर बिस्टा माहे पचावणिया। मुकते सेवे मुकता होवै हुमै ममता सब देखोवै। अंधन हर जियो सच्चा सेवी पूरा भाग गुर पावणिया। आपे बख्से मेल मिलाए पूरे गुर ते नाम निद पाए। सच्चा नाम सदा मन सच्चा सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर ना जान हो गुर सबदी हर अंतर पछाण हो। नानक नाम मिलै वड्याई पूरे गुर ते पावणिया। माज महला तीजा। ऐथा साचे सो आगै साचे मन सच्चा सच्चा शब्द राचे। सच्चा सेवै सच कमावै सचो सच कमावणिया। हो वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया। सच्चे सेवै सच समावै सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़ै साध न पावै दूजै पाए माया मन परमाव है। माया मोहे सब सुध गवाई करे अवगुण पछोतावणिया। सतगुर मिलै ता तत पाए हर का नाम मन वसाए। शब्द मरा मन मारा अपना मुक्ति का दर पावणिया। किल विख काटै क्रोध निवारे गुर का शब्द रखै और तारे। सच रते सदा बैरागी हूं मैं मार मिलावणिया। अंतर रतन मिला मिलाया त्रिबिद मनसा त्रिबिद माया। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए से जन राते गुर शब्द रंगाए। हर रंग चढ़िया तो पारा हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद सिद्ध सच संजम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई। गुरमुख कार सच कमावै सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थापो थापे गुरमुख जात पात सब आपे। नानक गुरमुख नाम त्याए नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा। उत्पत परलौ सब दे होवै सब दे ही फिर उपत होवै। गुरमुख वरता सब आपे सच्चा गुरमुख पाए समावणिया।
ਹੋ ਵਾਰੀ ਜੀਓ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਤ ਭਗਤ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਵਣ ਬੈਸੰਤਰ ਖੇਲਾ ਵਿਡਾਣੀ ਸੋ ਨਿਗੁਰਾ ਜੋ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਨਿਗੁਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ ਤਿੰਨ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਮਹਿਲੇ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸੱਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸੱਚ ਵਣਜਹਿ ਗੁਰ ਹੇਤ ਪਾਰੇ ਸੱਚ ਵਿਹਜਹਿ ਸੱਚ ਕਮਾਵਹਿ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੋ ਵੱਥ ਕਿਉ ਪਾਏ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਸਭ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਣਜਹਿ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਏ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ

ला तीजा सच्चा सेवी सच सालाही सच्चा नाए दुख कब ही नाही सुख सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया हो वारी जियो वारी सुख सहज समाद लगावणिया जो हर सेवा से सदा सोह है सोभा सुरत सुहावणिया राव सब को तेरा भगत कहाए सही भगत तेरा मन पाए सच बाणी तुदा सालाहन रंग राते भगत करावणिया सब को सचे हर जियो तेरा गुरमुख मिला ता

टंडोले में टूंड में डेठ में नानक जग तू हेगा धवल हारे पौड़ी तू करता पुरख अगा मैं आप सृष्टि उपाती रंग बिरंग उपार जना बाहो बहो विद भांति तू जाने जिनो पाई है सब केल तू माती एक आवे एक जाहे उठ बिरनावे मर जाती गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग हर रंग राती सो सेव सत नरंजनो हर पुरख विधाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद ध्याई दे मेरे सचे आ बल बल हाउ तिन जाती श्लोक महला पहला जियो पाए तन साजे रखिया बणत बनाए अखी देखै जेव बोले कन्नी सुर समाए पैरी चले हथी करना दिता पैने खाए जिन राज रचिया तिस न जाने अंधा अंध कमाए या भजै तां ठीकर होवे घाट घड़ी ना जाए नानक गुरबै नाहे पत पत बिन पार ना पाए महला दूजा दीन दे था वाउ दिता चंगा मन मुख ऐसा जानिए सुरत मत चतुराई था की क्या कराक वखाणी अंतर बह के कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए जो धर्म कमावे तिस धर्म ना होवे पाप कमाने पापी जानिए तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा अख वखाणी है जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोले विण ज्योति कोई किश करो दिखा से आनीए नानक गुरमुख नदरिया हरे को सुगुल सु जानिए पौड़ी तुद आपे जगद पाए कदुद आपे धंधे लाया मोट गौली पाए कदुद आपो जगद खुआया दिशना अंदर अग्न है नै तिब तै पुका तिहाया सहसा है संसार है अमर जमे आया जाया बिन सतगुर मोह न टुटा ही सब तक के करूं कमाया गुरमति नाम त्याये सुखरजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना धन जिने दी माया सोभा सो सुहावन जिना से दे के तलाया उस लोक महला दूजा की बाजो वेखना मिन करना सुनना पैरां बाजू चलना विड़था करना जीबे बाजू बोलना यो जीव तुमरना नानक हुकम शान कथो खसमे मरना महला दूजा दिसे सुनिए जानिए साउ न पाया जाए रुहला टुंडा अंदुला क्यों गल लगता है भै के चणकर भाव के लोहे सुरत करे नानक कह सियाणीए वकंत मिलावा होए पौड़ी सदा सदा तू एक तुदो तुद दूजा खेल रचाया हो मिंगर बो पाए कह लो बंत्र जनता पाया ज्यो भावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया एक ना बख्शे मेल लै गुरमति तुदे लाया एक खड़े करे तेरी चाकरी बिन नावे होर ना पाया होर कार बेकार है एक सच्ची कारे लाया पुत कलत कुटांब है माया निकलुप्त है जो तुद पाया ओहे अंदरों बाहरों निर्मल सचे नाय समाया श्लोक महला पहला सोए ने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पयाल कै वे धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर भार पुर कर काया कपड़ पैरा धोवा सदाकार पुर कर काया कपड़ पैरा धोवा सदाकार बग्गा रता पीला काला बेदा करी पुकार बेदा करी पुकार होय कुचीर रहा मलतारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना हो अनारंग सब विचार महला पहला वस्त्र पकाल पखाले का आपे संजम होवे अंतर मैं लगी ने जाने बारो मलमल धोवे अंधा भूल पया जमजाले वस्त पराई अपने घर जाने हो मैं दुख विच में वस्त पराई अपनी घर जाने हो मैं विच दुख घाले नानक गुरमुख हो मैं टुटे तुहारा नाम ते आवे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिनी किया विजोग जिन उपाया मूर्ख भोग भोग दुख सुभाया सुख उठे रोग पाव कमाया हर सुख बजाए विजोग उपाय खुपाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया कर सतगुरु हथ ने मेल झगड़ चुकाया करता कल सोग न चले चलाया श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए मुठा मुहाए साथे नानक ऐसा गूजा पे महला चौथा जिसे अंदर सच है सो सचा नामक सच अलाए ओ हर मार्ग आप चलदा होरना नु हर मार्ग पाए जी अगे तीर्थ होए तो मल है छपड़ नाते सगवी मल आए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदन हर हर नाम ते आए ओ आप छुट्टा कुटाम स्यों प्रवाह ओ आप छुट्टा कुटाम्ब स्यों दे हर हर नाम सब सृष्ट छाए जन नानक ते सबलहार ने जो आप जपे अवरा नाम जपाए पौड़ी एक कंध मूल चुण खाए वन खंड वासा एक भगवान वेस कर फिरे जोगी सन्यासा अंदर तृष्णा बहुत साधन भोजन की आसा बिरता जन्म गवाए ना गिरी ना उदासा जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविध मनसा गुरमति काल न आवे नेड़े जा होवे दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा नानक सतगुर सेवन अपना सियासा ते निरासा श्लोक महला पहला जे रात लगे कपड़े जामा हुए पुली पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाऊ खुदाए का दिल अशय मुख लेहो हवर देवाजे दुनी के झूठे अमल करेहो महला पहला जाओ नाही ता क्यों आखा केहो नाही क्या हुआ कीता करना कया कथना भरया पर धुआं आप न बुझा लोक बुझा ऐसा आगू हुआ।

पत्थर तारे, जियड़ा अग्न बराबर तपै, पीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवै दिन राती। गौड़ी बरागण महला पहला। रैन गवाई सोए कै,

0: वार वार हाउ जाओ जियो मैं बनजार नाम की तेरा नाम वखर वापार जी रहाओ कोकिल हुआ अंब बसा सहज शब्द विचार सहज सोपाए मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार मछली होवा जल बसा जी जंत सब सार उर पार पार मेरा सौ मिले उर वार पार मेरा सौ वसे हो मिलूंगी बां पसार नांगन होवा धर वसा शब्द वसे पौ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति जोत समाए
1: गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीर्ता किया करते का होए बिचारो कितकर का वो सुमिला सिवरो से जनहारो तुम गावो मेरे निरपहु का सोहला हम बारी सदा सोले सदा सुखोए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन समार संभ साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन असीसड़िया जे होवे साहब स्यो मेल घर घर हो पहुंचा सदले नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दे अवन राग गौड़ी ग्वारे री महला तीजा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद विदापे जाने हो हुक्मे मेले शब्द पछाने सतगुर हर मिलिए हर मेला होई आपे मेल मिलावे सोई मेरा प्रभ साचा विदापे जाने हुक्मे मेले शब्द पछाने सतगुर के पे परम पौ जाए पैरा चे सच रंग समाए रहाओ गुर मिल गए हर मन बस वसे सुभाए मेरा प्रभ पारा कीमत नहीं पाए शब्द सलाहे अंत न पारा वार मेरा प्रभ बख्शे बख्शन हार गुर मिलिए सब मत बद होए मन निर्मल बसे सच सोए साच वसिए साची सबकार उत्तम करनी शब्द विचार गुरते साची सेवा होए गुरमुख नाम पछाणे कोए जीवे दाता देवन हार नानक हर नामे लगे प्यार गौड़ी ग्वारे री महला तीजा गुरते ज्ञान पाए जन कोए गुरते बुझे सीजे सोए गुरते सहज साच विचार गुरते पाए मुख मुक्त द्वार पूरे भाग मिले गुराए साचे सहज साच समाए रहाओ गुर मिलिए तिसना अगन बजाए गुरते शांत बसे मन आए गुरते पवित तपावन सुच होए गुरते शब्द मिलावा होए बाज गुरु सब भरम भुलाई बिन नावे बहुता दुख पाई गुरमुख होवे सो नाम त्याई दर्शन सच्चे सची पत होई किसनो कहिए दाता एक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साच समावा गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सो थाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सची वाणी जुग चारे जापे सब किसे साचा आपे आपे कर्म होवे सतसंग मिलाए हर गुण गावे वह सुथाए रहाओ जलो ए जेबा दूजे पाए हर असना चाके फीका अलाए बिन बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिए चलिया रोए रसना हर चाख्या सहज सुभाए गुर कृपा ते सच समाए साची राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार नाम समावे जो भांडा होए उंदे भांडे टिके न कोए गुर शब्द मन नाम निवास नानक सच भांडा जिस शब्द प्यास

मन साध साधे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुखे मन लिया सवार होमे बिचों तजे विकार जो तुर राखन मेल मिलाए कदे न बिछड़े शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा होमे बिच सब जगत बोराना दूजे पाए भरम पलाना।

देना सी जय। इस जग में राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुर शब्द विचारा। आप तरे सगले कुल उदारा, इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई। कली न जन्म चंडाल के कर होई, नानक ना बिना को मुक्त न होई। गौड़ी महला तीजा ग्वारे री, सच्चा अमर सच्चा पातशाहो। मन साचे राते हर बेपरवाहो, सच्चे मेल सच

सब जग काले बस है बादा दूजे पाए होमे कर्म कमाम दे मनमुख मिले सजाए मनमुख मिले सजाए महला तीजा सब जग काले बस है बादा दूजा जाए होमे कर्म कमाम दे मनमुख मिले सजाए मेरे मन गुरचरणी चितलाए।

हर हर लिख पाया शोभा मंती नार है गुरमुख गुण गाया पेवकड़े गुण संभले सौरे बास पाया गुरमुख सहज समाणी है हर हर मन पाया सोसरे पिए पैर वसे को कित बिद पाइए आप निरंजन लख है आपे मेलाइए रहाओ आपे ही प्रभ दे मत हर नाम त्याइए बड़भागी सतगुर मिले मुख अमृत पाइए होमे दुबदा बिन सजाए सहजे सुख समाइए सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाइए मनमुख गर्भ न पायो अज्ञाने आने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने गर्भ जोनी बास पाएंदे गर्भे गल जाने मेरे करत एवे भावदा मनमुख परमाने मेरे हर पव लेख लखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम त्याया पेटिया गुरपूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंद पबीरा हर हर बख्श मलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी ब्रागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् विचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मुरारा सिर सख्त मिटाई है चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित विद पाई है संत जनों जिस देखो जीवा हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहाओ हो हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुणदाता हर राय है हम अवगणियारे पापी पाथर डूबते गुरमत हर तारे तू गुणदाता निर्मला हम अवगणियारे हर सरनागत राख लियो मूड मुक्त निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमती हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहे लागाया हर दया धार प्रभ बेनती हर हर चिताया जन नानक मंगे धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआरे री महला चौथा चौथा चौप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित सात सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूर्ख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे तर पौजल तू तारी राओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रया त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूरतन पावे सूद बैस पर किरत कमावे मैं मूर्ख हर नाम छुड़ावे सब तेरी सेट तू आप रिहा समाई गुरमुख नानक दे वड़ियाई मैं अंधले हर टेक टकाई गौड़ी गुआरे री महला चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की भज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत मिलाए हर रस रसना नाम गुण गाए राओ जो जन त्यावे हर हर नामा तिन दासन दास करो हम रामा जन की सेव उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रैन बड़भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बनाई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई।

हर बिटड़ियो सदा को ले जियो। बस मेरे प्यारा बस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन बस जियो। मन चिंदड़िया फल पाया मेरे गोविंदा, गुरपूरा वेख विकस जियो। हर नाम मिलया सुहागनी मेरे गोविंदा, मन आंदन आनंद रस जियो। हर पायड़ा बड़पागी मेरे गोविंदा, नित ले लाहा मन हस जियो। हर आप पाए हर आपे वेखे हर आपे कारे लाया जियो। इक खावे बख्श तोट ना आवे, इक ना फक्का पाया जियो। इक राजे ताकत बहे नित सुखिए, इक ना पिख मंगाया जियो। सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा, जन नानक नाम ध्याया जियो। गौड़ी माज महला चौथा,

हर राया मेरे सजन प्यारा गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो मेरे मन तन आसा पूरिया मेरे गोविंदा हर मिलिया मन बधाइया जियो बारी मेरे गोविंदा बारी मेरे प्यारिया हूं तुद तो बिटड़िया

हर नाम दिया कर पाया मेरे गोविंदा, जन नानक शरण तुम्हारी जियो, गोड़ी माज महला चौथा। चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारिया, हर पे हर प्रभ मेरा चोजी जियो, हरा पे कान पाएदा मेरे गोविंदा, हरा पे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब घट भोगदा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो, हर सुजान न भुली मेरे गोविंदा, आपे सतगुर जोगी जियो, आपे जग तो पाएदा मेरे गोविंदा, हर आप खेले भोरंगी जियो, एक ना

हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो। आपे जल तल वरतदा मेरे गोविंदा, भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी।

आपे शरण पवाइंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना की राख लाजे जियो। बड़ भागी मिल संगति मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो। गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर विरो लगाई जियो। मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो। मेरा नाम सका हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो। जप गुरमुख नाम जियो, बड़ भाग बडेरे जियो। हर हर नाम जियो प्रण हर मेरे जियो, फिर बोड़ न पव जल फेरे जियो। क्यों हर प्रवेखा मेरे मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो मन लागा पाओ जियो। गुर शब्दी पाया हर प्रीतम राओ जियो, बड़भागी जप नाओ जियो। मेरे मन तन बडड़ी गोविंद प्रवासा जियो, हर मेलो संत जियो गोविंद प्रभ पासा जियो। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूर अड़ी मन आसा जियो। गौड़ी माज

सर्व सुखा सुख सहाय हो, गुर उपदेश मने माले हो। जाको राम नाम लिव लागी, को नानक सो धन बड़ भागी। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवां, सुन हर कथा उतारी मैल। महापनीत पे सुख सैल, बड़े भाग पाया साध संग। पार ब्रह्म सिंह लागा रंग, हर हर नाम जपत जन तारियो। अग्न सागर गुर पार उतारियो, रहाओ कर कीर्तन मन शीतल पए। जन्म जन्म के किल विख गए, सरन दान पेखे मन माहे। आप ढूंढन काहे को जाए, प्रभ अपने जब पए दयाल। पूरन हुई सेवक काल, बंधन काट के अपने दास। सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए। पूर्ण पूरे ओ सब जाए, गौर पूरे सब परम चुकाया। हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, अगले मुए से पाछे परे। जो बरे से बंद लखरे, जै तन दे मैं हुए लपटाए। उनते दुगण दिड़ी उनमाए, वो बेला का चीत ना आवे। बिनस जाए ताऊ लपटावे, रहाओ आसा बंदी मूर्ख दे। काम क्रोध लपटे उसने, सिरों पर ठंडे का सिरों पर ठंडे लपटाए। रहाओ आसा बंदी मूर्ख दे, काम क्रोध लपटे अस दे। सिर पर ठंडे धर्म राए, मीठी कर कर भिख्या खाए। हाँ बंदो हर साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर। हों पंडित हो चतुर सियाणा, करने हार ना बुझे बिगाना। अपनी गत में तापे जाने, क्या को कहे क्या आख बखाने। जे जित लावे ते तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना। सब किछ तेरा तू करने हार, अंत नहीं किछ पारा वार। अप दास अपने को दीजे दान, कबू ना बिसरे नानक नाम। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, अनक जतन नहीं होत छुड़ारा। बहुत स्याण आगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दर गए शोभा सेत, प्रभ मेरे गौहर नाम का उला। तुझे न लागे ताता चोला, रहाओ ज्यों भोज पैसा गरमा है। अंधकार दीपक दीपा है, अगन सीत का लाए सदूख। नाम जपत मन होवे सुख, उतरस जाए तेरे मन की प्यास। पूरन होवे सगली आस, डोले नाही तुमरा चीत। अमृत नाम जप गुरमुख मीत, नाम औखद सोई जन पावे। कर कृपा जिस आप दिलावे, हर हर नाम जाके हृदय बसे। दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। बहुत दर्ब कर मन्ना गाना, अनक रूप देख न पतियाना। पुत्र कलत्र और जो जान मेरी, ओए बिन से ओए पसमे टेरी। बिन हर भजन देखो बिल लाते, त्रिग तन माया संगराते। रहो जिव बगारी के सिर दी जे दाम, ओए कसमें के गए उन सयाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारे ता निरारत काजा। ज्यों राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पाले किछ ना पड़े। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तिसना। आप बनाए आप करे रास, नानक प्रभा के अरदास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, बहु रंग माया बहु बद पेखी। कलम कागद स्याण पलेखी, मेर मलूक होए देखिया पखान। ताते नाही मन त्रिपतान, सो सुख मोक्यो संत बतावो। तिसना बूझे मंत्र बतावो, रहाओ हस पवन हस सवारी। चोआ चंदन सेज सुंदर नारी, नट नाटक खारे गाया। ता मैं मन संतोख न पाया, तख्त सभा मंडन दोलीचे। सगल मेवे सुंदर बागीचे, आखेड बैद राजन की लीला। माना सेला परपंच हीला, कर कृपा संतन सच कहा। सर्ब सुख यो नंद लिया, सा संगर कीर्तन गाइये। को नानक बड़ भागी पाइये, जाके हर तन सोई सहेला। प्रभ कृपा ते साध संग मेला, रहाओ दूजा। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा,
प्राणी जाने ये तन मेरा बोर बोर पाओ लपटेरा पुत्र कलतर अग्रत का फासा हो न पाए राम के दासा कवन सो भेज जित राम गुण गाए कवन सो मत जित तरे माए राव जो भलाई सो बुरा जाने साच कहे सो बिखे समाने जाने नाही जीत और हार यो बलेवा साक्त संसार जो हला हल सो पीवे बोरा अमृत नाम जाने कर कौरा साध संगत के नाही नेर लख चौरासी भरमता फेर एके जाल पाए पंखी रस पो करे बोरंगी को नानक जिस पै कृपाल गरपूरे तांके काटे जाल गोड़ी ग्वारे री महला पंजवा तो कृपा ते मार्ग पाई है प्रभु कृपा ते नाम ते आई है प्रभु कृपा ते बंधन छुटे तो कृपा ते होमे टूटे तुम लावो तो लागे सेव हम ते कछु न होवे देव रहाओ तुद पावे ता गावा वाणी तुद पावे ता सच बखाणी तुद पावे ता सतगुर मया सर्व सुखा प्रभु तेरी दया जो तद पावे सो निर्मल कर्मा जो तद पावे सो सच धर्मा सर्व दान गुण तुम ही पास तू साहेब सेव कर दास मन तन निर्मल होए हर रंग सर्व सुखा पावो सतसंग नाम तेरे रहे मन राता एहो कल्याण नानक कर जाता गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा आंदसा जेते ते चाखे निमखना तिसना तेरे लाथे हर अस का तू चाखे साध चाखत होए रहे बिस्माद अमृत रसना पियो प्यारी ए रस राती होए तिपतारी रहाओ हे जे बे तू राम गुण गाओ निमख निमख हर हर हर त्याओ आन न सुनिए कतू जाइए सा संग बड़ भागी पाइये आठ पैर जेवे अराध पार ब्रह्म ठाकर अगाध इहा उहा सदा सुहेली हर गुण गावत रसना मोली बनस्पत मोली फल फल पेडे ए रस राती बोड़ न छोडे आन न रस कस लवे न लाई को नान गुर पै सहाई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा मन मंदर तन साजी वार तैसी मधे वस्त पार तैसी पीतर सुनियत साहो कवन बापारी जा का उहा बिसाहो नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी राहो मन तन अर्पी सेव करी जे कवन सजोत जित कर पी जे पाए लगो तज मेरा ते है कवन सुजान जो सौदा जोरे मैल साका कन विद पावे कवन सुबिद जित पीतर बुलावे तू बड़ साओ जाके कोट बन जारे कवन सुदाता ले संचारे खोजत खोजत निज कर पाया मोल रतन साच दिखलाया कर कृपा जब मेले साहे को नानक गुर के बैसाए गौड़ी महला पंजवा ग्वारे री रैन दिन से रहे एक रंगा प्रभ को जाने सद ही संगा ठाकर नाम की ओन बर्तन तिवत गावन हर के दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरणी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एको निहारे आज्ञाकार एको वणज एको व्यवहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हरक सोग दुहते मुक्ते सदा लिपत जोग हर जुगते दिसे समय सबते रहते पार ब्रह्म का हुए ध्यान धरते संतन की नी महिमा कवन बखानो गाद बोध किस कीमत नहीं जानो पार ब्रह्म हुए कृपा कीजे तूर संतन की नानक दीजे गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा तू मेरा सखा तू है मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिना जाई न रहना तू मेरा लालन तू मेरे प्राण तू मेरे साहब तू मेरे खान रहाओ ज्यों तुम रखो तिव ही रहना जो तुम करो सो ही मोहे करना
जैते को तै तुम बसना निरपो नाम जपो मेरे रते रसना। तू मेरी नवन तू भंडार रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रचिया तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया परम तुम्हारा गुर ते पाया। सतगुर ते दृढ़ाया एक एको नानक दास हर हर हर टेके गोड़ी गुआरे री महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार व्यापत सुरग नरक अवतार व्यापत तन निरतन प्रेम शोभा। मूल व्याधि व्यापस लोभा माया व्यापत बहु प्रकारी। संत जीवे प्रभोट तुम्हारी सब ओट तुम्हारी रहाओ। व्यापत हैंगवद को माता व्यापत पुत्र क्लत्र संग राता। व्यापत हस्त घोड़े हर वस्ता व्यापत रूप जोवन पन मस्ता। व्यापत भूम रंग रंगा व्यापत गीत नाद वस्ता। व्यापत रूप जोवन मद मस्ता व्यापत भूम रंग अर रंगा व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज मैल सिगार पांच दूत व्यापत अंधियार। व्यापत कर कर्म करे हो फासा व्यापत ग्रस्त व्यापत उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त जात सर्व किछ व्यापत रंगरात। संतन के बंधन काटे हर राय ताको कहां व्यापे माए। को नानक जिन तूर संत पाई ताके निकट ना आवे जाई। ताके निकट ना आवे जाई कोड़ी ग्वारे री महला पंजमा। नैनो नींद भरे दिल विकार सरबण सोए सुनेंद विचार। व्यापत भूव रंग रंगा व्यापत गीत नाद सुन संगा। व्यापत सेज मैल सिगार पांच दूत व्यापत अंधियार। व्यापत कर्म करे हो फासा व्यापत ग्रहत व्याप्त उदासा। आचार बिहार व्याप्त जात सब किछ व्याप्त हर रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय ताको कहां व्यापे माए। को नानक जिन धूर संत पाई ताके निकट ना आवे जाई। ताके निकट ना आवे माई गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। नैनो नींद प्रदिष्ट बेकार सरबण सोए सुनेंद विचार। रसना सोई लो मीठे साध मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे सात वास्तो अपनी लय राओ। सगल सहेली अपने रस

नाम जाने ऊपर प्रभ पे दयाल जन की टेक एक गोपाल एका लेवे को मन पाओ सर्बनदान जन कै हर नाओ पार ब्रह्म सिउ लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुर पूरै मिटियां दियार नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए।

सिमर मना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्ब निधान प्रभ की पूजा पाई है मान जाके टहलना बिरथी जाए सदा सदा हर के गुण गाए कर कृपा प्रभ अंतर जामी।

गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कर गुरु नानक को दिया। गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा आरादो कमन जोग काया ले साधों।

मत निर्मल कहियत धीर, राम रसायन पीवत बीर, हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट, रहाउ सो तन निर्मल जित उपजैना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बिकार, सबते ऊच

नेत्र प्रकाश किया बुर गुरुदेव परम गए पूर्ण पई से ब्रहाओ शीतला ते राख्या व्यवहारी पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी नानक नाम जपै सो जीवै साध संग हर अमृत पीवै गौड़ी महला पंजवा तन हो मस्तक तन तेरे नेतो तन हो भगत जिन तुम संघेतो नाम बिनाम कैसे सुख लही आए रसना राम नाम जस कही है जिन ऊपर जाइए

पाप मिट साधु शरण दयाल रहाओ। बहुत उर्ध तप साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन आराधे सिमरत शास्त्र वेद बखाडे जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभसु मन माने अगाध बोध हर अगम पारे नाम जपत नावृदय बिचारे नानक उप्रभ कृपा तारे गौड़ी महला पंजवाओ सिमर सिमर सिमर सुख पायाओ चरण कमल गुरदय त्याया चरण कमल गुरदय बसाया गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा तिस राध मेरा मन तीरा राओ अनदिन जपो गुरु गुरु नाम तात सिद्ध भय सगल काम दर्शन देख शीतल मन भय जन्म जन्म के किल बिकाए

बाप जैसे माई प्रभ की शरण उबरे सब कोय करण करावन पूर्ण सत सोय रहाओ अमन बसिया करण हाराओ पै बिन से आतु सुख साराओ कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल बिखलाथे कह न जाए प्रभ की वडियाई नानक दास दास शरण आई रागौड़ी चेती महला पंजवा दो पदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद राम को बल पूर्ण भाई ताते ब्रिथा न व्यापक काई रहाओ जो जो चितवै दास हर माई सो सो करता आप कराई निंदक की प्रपत गवाई नानक हर गुण निरपो गाई गौड़ी महला पंजवा भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लिहो अंगुरिया राज श्रमण सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ नाथ करना मैं साजन मीत पिता महतरिया चरण कबल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया रागौड़ी बैरागण महला पंजवा एक ओ अंकार सत गुर प्रसाद दय गुसाई मीतला तू संग हमारा बास जीवराओ तुझ बिन करी नहीं जीवना तुझ बिन करी ना जीवना त्रिगड़ मन संसार जी प्राण सुख दाते आओ निमक निमक बलिहार जी हस्त अलंबर देहो प्रभ गत हो उदर गोपाल मोहन निर्गुण मथुरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे संभलाओ कावन विधि विचारु शरण समाई दासित उच्चे अगम पारु सगल पदार्थ अष्ट सिद्धो नाम महान रस माहि सुप्रसन्न कहे पै केसवा से जन हर गुण गाहि मात पिता सत बंद पौ तू मेरे प्राण धारु साध संग नानक पजाय बिखतर या संसार गौड़ी बैरागण रहोए के शांत के घर महला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद है कोई राम प्यारू गावै सर्व कल्याण सूच सुख सच पावै रहाओ बन बन खोजत फिरत बैरागी है कोई राम प्यारे गावै सर्व कल्याण सुख सच पावै रहाओ बन बन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी जिन हर पाया से बड़ भागी ब्रह्मादिक सनकादिक चाहे जोगी जति सिद्ध अर आहै जिस प्राप्त सो हर गुण गाहै ताकि शरण जिन बिसत नाही

सुख सहज आनंद तिन संग उन समसर अवरणंग दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पराय सुतरिया संत संग पूर्ण आसा ताके चरण परो ता सेव जीवा जन कै संग निहला सुतरिया संत संग पूर्ण आसा सुख सहज आनंद तिना संग उन समसर अरुण दाते जगत उदाहरण से आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण पराय सुतरिया संत संग पूर्ण आसा ताके

ना भाई जाको जा हो कृपालता सतगुर मिले सब सुख हर के नाए मुक्त भया बंधन मुक्त भया बंधन गौर खोले जन नानक हर गुण गाए गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन गौर गौर गौर मन लेता तेते ही गुण गाइए मेरे मन गुर गुर गुर सत करियाए रतन जन्म सफल गुर किया दर्शन को बल हरिया राउ जीते सास ग्रास मन लेता तेते ही गुण गाइए जो होए दयाल सतगुरु अपना ता एह मत बुद्ध पाइए मेरे मन नाम लए जम ते चुटै सर्व सुखा सुख पाइए सेव स्वामी सतगुरु दाता मन बांछत फल पाइए मन बांच फड़गाई है नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारा चल है कर सेवा सतगुरु अपने की गुरते पाइय पालय गुर कृपाल कृपा प्रपतारी बिन से सर्व देसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिट्यो सगल कलेसा रागौड़ी महला पंजवा इक ओंकार सतगुरु प्रसाद तृष्णा बिरले ही की बुझी है राग कोट जोड़े लाख करोड़े माना होरे पर परह को लूझी है सुंदर नारी अनक प्रकारी पार ग्रह बिकारी बुरा भोला नहीं सुझी है अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निध नहीं गाया मन बिखै ही मैं लूझी है जाकुरे कृपा करै सोई जीवत सोई मरै साध संग माया तरै नानक सो जन दर हर सिजी हे गौड़ी महला पंजवा सब हो को रस हर हो रहाओ

और अवतार शिवपुरी ब्रह्मापुरी शिवपुरी ब्रह्मा इंद्रपुरी निश्चल को थाओ नाही बिन हर सेवा सुख नहीं हो सकत आवे जाए जैसो गुरु उपदेशया मैं तैसो कह पुकार नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधारू रागोड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पाए ओ बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग आन मृत सो दुख सुख चित समतर कुर मिले रहाओ जौलो हो कि सोचो चितवाओ तौलो दुख नु परे जाओ कृपाल गुर पूरा पेटिया तो आनंद सहजे जित सियाणप कर्म हो किए

0: नाई जो दिसे सो सगल मनासे, जो बादर की छाई जन नानक जग जाने ओ मिथिया रहो राम सरनाई। गौड़ी महला पंजवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे एंड समगन रह माया मैं है कहो कैसे गुण गावे राव। पूत मीत माया ममता स्यों ए बिद आप बंधावे मृग तृष्णा जो झूठो एहो जग देख तास उठतावे। मृग तृष्णा एहो मृग तृष्णा जो झूठो एहो जग देख तास उठतावे। मुक्त भुगत का कारण स्वामी मोड़ता है बिसरावे।
1: जय नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा साधु एहो मन गहो न जाई चंचल तृष्णा संग बसत है जाते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध घट ही के भीतर जे सुध सब विसराई। रतन ज्ञान सब को हरलीना तास्यो कछ ना बसाई। योगी जतन करत सब हारे गुणी रहे गुण गाई। जन नानक हर भय दयाला तो सब बिद मन आई। गौड़ी महला नौवा साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म मोलक पायो बिरथा काहे गवायो। रहाओ पतत पुनीत दीन बंधार सन ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब मान मोह माया फुन भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा कौ माई भूलो मन समझावै वेद पुराण साध मंग सुन कर निखुना हर गुण गावै। रहाओ दुर्लभ देह पाई मनस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महासंकट बनता स्यों तास्यों रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभता स्यों नेहो न लावै। नानक मुक्त ताहे तम मान हो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नौवा साधो राम सन विश्रामा वेद पुराण पढ़े को हे गुण सिमरो हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फुन औबिखियन की सेवा हरख सोग परसे जेह नाहिन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत विख ए सब त्यों कंचन अर पैसा उस्तत निंदा ए सम जाके लोभ मोह फुन तिस तैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी निंदा। नानक ए समता के लोभ मोह फुन तैसा दुख सुख ए बांधे ए नाहिन तेह तुम जानो ज्ञानी। नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो पुरानी। गौड़ी महला नौवा मन रे कहाँ पयो तह बौरा ऐनस औध कटे नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपने कर मान्यो और सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ ते रोरे नाहन देखो सोच विचारी। रतन जन्म अपनो तय हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमुख नालीन भयो चरणन स्यों बिरदा औद सरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। पौड़ी गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल पै भंजन सरन ताहे तम पर रे। रहाओ वेद पुराण यास गुण गावत ताके नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर क संभल सब हर रे मानस देह बौर नह पावे कछ उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाय कर नाम भव सागर के पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी ग्वारे री एक ओहकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर है बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार

तानगगन न देखो को दोए नारी पुरख सबाई लोए चित लाई स्वाय लोए रावसा देख्यो दीपक उजाला सब निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुर मौको एक बुझाया एक निरंजन गुरमुख जाता दूजा मार शब्द पछाता एको हुक्म वरते सब लोई एक ते सब उपत होई राह दोवै कसम एको जान गुर के शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कौ नानक एको सालाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे ता साचा मुक्त भेद क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत विचारे पंच मार साच और तारे रहाओ जिसके अंतर साच बसावे जोग जुगत की कीमत पावे रावसा से एको ग्रह उद्यान करनी कीर्त कर्म समान एक शब्द एक भेख्या मांगे ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे पैरच रहे न बाहर जाए कीमत कौन रहे लिवलाए आपे मेले परम चुकाए।

आरी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोह अत भरम भुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी ग्रेही अंतर साच लेवलागी नानक सतगुर सेवे सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल बेद अभ्यासा तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा त्रिगुण परमे नाही निज घर वासा हम हर राखे सतगुरु मिलाया आंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया रहाओ त्रिगुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद वखाने सिर मारे जमकाला तातना चीने बने पंड पराला मनमुख ज्ञान कुमार्ग पाई हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाई पव जल डूबे दूजे पाए माया काम ताज पंडित कहावै बिख्या राता बहुत दुख पावै जमका गल जीवड़ा निद काल संतावै गुरमुख जमकाल नेड़ न आवे होमे दूजा शब्द जलावे नामे राते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुने रेत नंत दिसे जुग माही तिनको सब निवे अनदिन पूज कराही सहजे गुण रवे साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सनाया त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया नानक होमे मार ब्रह्म मिलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाण अंतर तामस आप ना विछाण ता प्रभु पाए गुरु शब्द वखाण गुरु सेवा करो फिर काल ना खाए मनमुख खादे दूजे पाए रहो गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे गुर के शब्द अंतर सहज रीदे मेरा प्रभ पाया गुर के शब्द सीधे सतगुर मेले प्रभ आप मलाए मेरे प्रभ साचे कह मन पाए हर गुण गावे सहज पाए बिन गुर साचे परम भुलाए मनमुख अंधे सदा विख खाए जम डंड सह सदा सुख दुख पाए जमुआ न जोहे हर की सरनाई होमे मार सच लेवलाई सदा रहे हर नाम लेवलाई सतगुरु सेवे से जन निर्मल पपीता पवीता मन सिव मन मलाए सब जग जीता इनबिद कुशल तेरे तेरे मेरे मीता सतगुरु सेवे सो फल पाए हिरदे नाम विचों आप गवाए अनहद बाणी शब्द बजाए सतगुर ते कवन

होए परगास ऐसा दृढ़ता ताकाय होए जाको दया मया प्रभ सोई रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान जेता बोलन तेता ज्ञान जेता सुनना तेता नाम जेता पेखण तेता ध्यान सहजे जागण सहजे सोए सहजे होता जाए सो होए सहज बैराग सहजे ही रसना सहजे चुप सहजे ही जपना सहजे भोजन सहजे पाओ सहजे मिट्यो सगल दुराओ सहजे होआ साधु संग सहज मिल्यो पा ब्रह्म ने संग सहजे ग्रह में सहज उदासी सहजे दुदा तन की नासी जाके सहज मन भया आनंद ताको भेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा मैं आत्म रसिया ताके संग अवनासी वसिया सहजे आसन अस्तर पाया सहजे अनत शब्द बजाया सहजे ऋण चा चुनकार सुहाया ताके कर पा ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जाके सहज भया सो जाने नानक दास ताके कुरबाने गौड़ी महला पंजवां।

सदा सदा तिस गुर कौ करी नमस्कार। कल क्लेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महा

खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चुका है, जहां गुरसबदी चित लाए। मन मुगद गवार पिराजियो, शब्द मन न बसाए, माया का प्रम अंध पिराजियो, हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए, बिन सतगुर पाए। मन मुख आप गणाए, हर के चाकर सदा सहेले, गुर चरणी चित लाए, जिसनु हर जियो करे कृपा, सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन जग लाहा, गुरमुख आप बुझाए, रा गौड़ी संत महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन बैराग पया जियो, क्यों देखा प्रभु दाते, मेरे मीत सखा हर जियो, गुरपुरख विधाते। पुरखो विधाता एक श्री धर, क्यों मिले तुझे उड़ीणिया, कर करै सेवा शीस चरणी। मन आस दर्शनी माणिया, सास न घड़ी विसरै, पल मूर्त दिन राते। नानक सारंग ज्यों प्यासे, क्यों मिलिए प्रभु दाते, एक बिनो करो जियो, सुनकंत प्यारे। मेरा मन तन मोह लिया जियो, देख चल तुम्हारे, चलता तुम्हारे देख मोही, उदास तन क्यों धीरै, गुणवंत ना दयाल बाला, सर्व गुण भरपूर है, फिर दोस नाही सुखै दाते, हो विछड़ी बुरियारे। बिनवंत नानक दया तार, कर आवो ना प्यारे, हों मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा, हों फिर सर अर्पी तस्मीत प्यारे, जो प्रभु देस देसा, अर्प्या ता सी स्थान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। किन में सगला दुख मिटया, मन हो चिंदया पाया, दिन रैन दलिया करे कामन मिटे सगला देसा, बिनवंत नानक अंत मिलिया, लोड़ते हम जैसा। मेरा मन अनद पया जियो, वजी वधाई, कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बजाई, मिलिया तां लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया, समीत बंधवर कुपजया, थूत थाव गवाया। अनहत बाजे वजह करम, पिर संग सिज बिछाई, बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंजवा, मोहन तेरे उचे मंदिर मैं लपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो, संत धर्मशाला। धर्मशाला पार दयाल ठाकुर, सदा कीर्तन गावे, जय साध संत एकत्र होवे, तां तुझे त्यावे, कर दया मैं दयाल स्वामी, हो दीन कृपाला। बिनवंत नानक दर्स प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा, मोहन तेरे बचन रूप चाल निराली, मोहन तू माना एक जी अवर सब राली, माना ते एक लेख ठाकर जिन्हें सब गल धारिया, तुद बचन गुर कह बस किया, आदि पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहा आप सब कल धारिया, बिनवंत नानक पैज रख सब सेवक शरण तुमारिया, मोहन तुद सत्संग त्यावै दर्श ध्याना, मोहन जम निर्णयावै तुद जपै निदाना, जमकाल तिनको लगै नाही, जो एक मन त्यावहे, मन बचन करम जे तुद आरा दैसे सबे फल पावे, मल मूत मूड जे मुग्ध होते, से देख दर्श सुज्ञाना, बिनवंत नानक राज नेचल पूर्ण पुरख भगवाना।

नासा जी जाके प्रभ बसाए। सो प्रसन्न देवा सफर सेवा पई पूर्ण काला, बिनवंत नानक किश पुनी जत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मेरे उदम करेहा, मनाए लै हर कंत मन त्या कर भगत ठकौरी, मोह साधु मंता है सखी वसे आया फिर छोड़ न जाए। गीत पली भगवंत है नानक जरा मरण पै नरक निवार है, पुनित करै पुनीत करै जनता है। सुन सखिए भली बिनंती है, मतांत पकाई ऐसा सुभाय पाद रह तो होए, गीत गोविंद गाइया कल कलेस मिटै परम नासै, मन चिंदिया फल पाइया पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आईया। सखी इच करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्स बैरागन पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग समर्थ पुरख मिलाए। नानक तिन मिलिया सर्जन सुखदाता से बड़ भागी माए, सखी नाल वसा अपने ना प्यारे, मेरा मंतन हर संग हिलिया।

0: प्रमुख होयो सांत सहज स्वामी प्रकाश पया कोल खिलिया वर पा प्रभ अंतर जमी नानक सुहागना टलिया वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

0: मन हर के नाम की महिमा ऊचो
1: नानक नाम उतरे पतित बहु मूचे
0: बहुत सियाण जाऊ का पौ व्यापै
1: अनेक यतन कर कृष्ण ना त्रापै
0: एक अनेक अग्नि बुझे
1: कोट फादर गए नहीं सिजे
0: दूस नाही उप्यालो
1: व्यापे माया जाल
0: अवर कर तू सगली जम डाने
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
0: हर का नाम जादू सहाय
1: नानक बोले सहज सुभाए
0: चार पदार्थ जे को

0: रमैया गगन चेत परानी
1: कान मूलते कान दृष्टामि
0: जंतु सास स्वास संगारिया
1: गर्भगन में जिने उभारिया
0: वार सथा तुझ प्यारे दूध
1: जोवन भोजन सुख सूद
0: बैठ ब्याह ऊपर सक सैन
1: ब्याह बैठ को देन
0: एहो निर्गुण गुण कसु न बूझे
1: बगसलियो तो नानक सीजे
0: जे बरसात तार उपसक बसै
1: सूत प्रात मीत बनता संग हसे
0: जे बरसात पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक मुला
0: जे बरसात भोगे सब रसा
1: सगल समग्री संग साथ बसा
0: जीने हस्त पाव कन नेत्र रसना
1: तिसे त्याग वर संग रचना
0: ऐसे दोह मूल अंध व्यापे
1: नानक काल लियो प्रव्यापे
0: आद अंत जो राखन हार
1: इस्यों प्रीत न करे गवार
0: जाकी

0: संघ साई सो आवे ना चीत
1: जो बेराई ता सो प्रीत
0: बलुआ के कह रितर बसे
1: अनंत के माया रंग रसे
0: चढ़कर माने मने प्रतीत
1: नावे मुड़े चीत
0: वैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार महालोक त्रोह
0: यहूं ज्योत बिहने के जा

0: ना होवे।
1: जिसकी बात सागे रखे
0: रब की आज्ञा माने माथे,
1: उसके चौगन करे निहाल।
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक भांत माया के हेत।
0: सर होवत जान अनेत,
1: बिरकी साया से रंग लावे।
0: ओ बिन से ओ मन पछतावे,
1: ज्योति से सो चालन हारो।
0: पटरियो ते अंध अंधार,
1: बटाओ स्यों जो लावे ने।
0: आको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई।
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कटम बसवाया।
0: मिथ्या हमें ममता माया,
1: मिथ्या राज जोवन तन माल।
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या रथ हास्ती अस वस्त्रा।
0: मिथ्या रंग संग माया पेट हस्ता,
1: मिथ्या तो मोह मान।
0: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान,
1: असर पात साध की सरन।

0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा।
1: अभाव स्यान पसह कलते रहत
0: सब जाने आत्म की रहत
1: जिस पावे तह लय लड़ लाए
0: थान थनंतर असमाए
1: सो सेव कर जैसे करते।

0: ये प्रसाद शक्ति मृत खा है ये प्रसाद सुगंध तन लावे ये प्रसाद बसे सुख मंदर ये प्रसाद ग्रह संग बसना ये प्रसाद रंग रस भोग ये प्रसाद पाठ पटम बखंडावे ये प्रसाद सुख सोए सुई जय
1: जस
0: का प्रसाद तुत सब को मन
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: ये प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जत दर गए मन पावा
1: नानक पासे ती कर जावे
0: ये प्रसाद अरोग कंचन देही ये प्रसाद तेरा उल्ला रहता
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: ये प्रसाद तेरे सगल सिंदर टाके
1: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
0: ये प्रसाद तुझ को ना पहुंचे
1: सिमरो प्रभु
0: ये प्रसाद भाई द्रव दे
1: नानक ताकी भगत करे
0: ये प्रसाद अबु कुहन प्रीजय
1: मानते सिमरत क्यों आलस कीजे
0: ये प्रसाद आसव हास सवारी
1: मानते प्रभु को कबो ना दिसारी
0: ये प्रसाद बाल मेरे खुदना
1: राग परोई प्रभु अपने मना
0: जन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठ सता तिसे त्याई
0: तेरे त्याई जो एक अलख है
1: नानक तेरी रखे
0: ये प्रसाद करे पुण्य बहु दान
1: आठ पहर कर तिसका ज्ञान
0: ये प्रसाद तू चार बिहारी ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: प्रभु सिमरो सदा अनूप
0: ये प्रसाद तेरी निकी जात
1: प्रभु सिमर सदा दिन रात
0: ये प्रसाद तेरी पत रहे
1: गुरु प्रसाद नानक दास
0: ये प्रसाद सुने का नाद
1: जय प्रसाद देखे विस्माद
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे
0: जय प्रसाद हस्त कर चले
1: जय प्रसाद संपूर्ण
0: जय प्रसाद परम गत पावे
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्राप्त त्याग अवर कत लागो
1: गुरु प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू बाग प्रसन्न

0: साध के संग मको जल होता
1: सत्संग मल सगली होता
0: साध के संग मिटे मानो
1: साध के संग प्रगटे सुज्ञान
0: साध के संग बुझे भव नेरा
1: सत्संग सब होत निबेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग ऊपर जतन
0: साध की महिमा वाने कौन पुरानी
1: नानक साध की शोभा प्रमाए समानी
0: साध के संग गोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: सत्संग अमृत रस ऊंचा
0: साध संग होए सब की देना
1: साध के संग मनोहर बहन
0: साध के संग ना कदू तावे
1: साध संग सत मन पावे
0: साध के संग माया ते पहनो
1: साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
0: साध संग दोहन सब मीत
1: साधु के संग महापुनीत
0: साध संग कैसे नहीं वैरो
1: साध के संग ना बिगा पैर
0: साध के संग ना ही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग ना ही उताप
1: साध के संग तजे सब आप
0: अपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग ना कबू तावा
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग वास्तव गोचर लहे
1: साधु के संग अजर सहे
0: साध के संग बसे सान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल द्वारा
1: साध संग साजन नीत कुटुंब निस्तार
0: साधु के संग सो तन पावे
1: जिस तन ते सबको बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप लायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम
1: नानक साध के संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कुछ काल
1: दर्शन पेट तो होत निहाल
0: साध के संग गुरु हरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग यहाँ हुआ सेला
1: साध संग बिछरत हर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध के संग ना बिरथा जावे
0: पाव रहम साध रस बसे
1: नानक उधरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग ना मन ते बिसरे
1: साध संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे भाव डीठा
1: साधु के संग कट कट डीठा
0: साध संग भय आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध मिटे संजोग
0: साध की महिमा वेदना जाने
1: जे

0: परे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर्लेप
0: जैसे जल में कमल लेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर्दोख
0: जैसे सूर सर्व को शोक।
1: ब्रह्म ज्ञानी के जस मान
0: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान।
1: ब्रह्म ज्ञानी के तीर्जे
0: का जो वस्ता को खोदे को चंदन लेप।
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक नाओ
0: नानक जो पाव का सह सुभाओ।
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
0: जैसे मैल न लागे जला।
1: ब्रह्म ज्ञानी का मन होए प्रकाश
0: जैसे तारे ऊपर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान।
1: भोग ज्ञानी ऊंचते ऊंचा
0: मन अपने सत्य नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए
0: नानक जिन प्रभु आप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सौरभ मया
0: ब्रह्म ज्ञानी ते संग्रहणा पया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य अमृत वर्षी।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्त
0: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
0: ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
1: ब्रह्म

0: सोफला
1: ब्रह्म ज्ञानी सफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल आधार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अमूल त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी का होए चिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभु आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का धर्म भागी पाया
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाये
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा
0: देश ब्रह्म ज्ञानी का कथन जायदा खरो
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सा सच का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मौत ज्योत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का

0: निरंजन दर्श
1: पर्तन रूप न पेखे नेत्र
0: साथ के पैर संत संग हेत
1: कर न सुने काहू के निंदा
0: सते जाने आपस को मंदा
1: गौर पर साहब बिखिया पर हरे
0: मन की वासना मानते करे
1: इंद्रिय जित पांच दोख ते रहत
0: कोट न देखो ऐसा परस
1: वैष्णव सो जैस ऊपर सो परसान
0: की माया ते होए भिन्न
1: कर्म करत होवे न कर्म
0: इस वैष्णव का निर्मल धर्म
1: काहू फल की शनि वशे
0: केवल भगत कीर्तन संग्राच
1: मंत्र अंतर सिमर गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आव दृढ़ अवरा नाम जपावे
0: नानक वैष्णव परम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत करांग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मंत्र बिनसे सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साथ संग पापा मल खोवे
0: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत हर के चन हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पांड जो मन प्रबोध है
0: राम नाम आत्म में सोध
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जीवे
1: हर की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नावे
1: वेद पुराण सिमरत बुझे मूल
0: सुख में जाने स्थूल
1: तो वरना को देव देश
0: नानक उस पंडित को सदा देश
1: बीज मंत्र स्वर को ज्ञान
0: वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी

0: पुजारी
1: कई कोड आचार व्यवहारी
0: कई कोड भय तीर्थवासी
1: कई कोड ब्रह्म परम उदासी
0: कई कोड वीर केसर होते
1: कई कोड तपी सर होते
0: कई कोड आत्म ध्यान तारा
1: कई कोड तब का विचार
0: कई कोड नावतन नाम ते आवे
1: नानक करते का अंत ना पावे
0: कई कोड भय मानी
1: कई कोड आनंद ज्ञानी
0: कई कोड कृपा कठोर
1: कई कोड अभिघातम निकोर
0: कई कोड पर दर्व कोहे
1: कई कोड पर दुख ना करे
0: कई कोड माया शर्म माहे
1: कई कोड पर देश प्रमाए
0: जित लावो तित लगना
1: देश प्रमाए
0: जित लावो तित लगना
1: करते की जाने करता रचना
0: कई कोड सिद्ध जति जोगी
1: कई कोड राजे रस भोगी
0: कई कोड पांकी सरो पाए
1: कई कोड पाथर बिरख नि बजाए
0: कई कोड पवन पानी बसंतर
1: कई कोड देश भूमंडल
0: कई कोड ससे सून खतर
1: कई कोड देव दानव इंद्र सिर छतर
0: काल समग्री अपने सूत तारे
1: नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे
0: कई कोड राज ताम सात का
1: कई कोड वेद पुराण सिमरत अरसास्त
0: कई कोड किए रतन संबंध
1: कई कोड नाना प्रकार जंत
0: कई कोड किए जर जीव
1: कई कोड गिरी में सुवरन कीवे
0: कई कोड जाक अनुसाच
1: कई कोड भूत प्रे सुकर मृगाच
0: सब ते नेरे सब ते दूर
1: नानक पद पत्र भरपूर
0: कई कोड पाताल के वासी
1: कई कोड नरक सुरग निवासी
0: कई कोड जन्म जीव मरे
1: कई कोड भोजनी फिरे
0: कई कोड बैठती खाए
1: कई

0: प्रभ विनाश
1: कई कोट मांगे सत्संग जिनको होए आस हो प्रसन्न
0: नानक तेजम सदा तन तन
1: कई कोट खानी अर खंड
0: कई कोट आकाश ब्रह्मंड
1: कई कोट होए अवतार
0: कई जगत के नो विस्तार
1: कई बार कथे उपसार
0: सदा सदा एक ओंकार
1: कई कोट कीने वपात
0: प्राप्ते हुए प्रमाए समात
1: ताका अंत न जाने कोए
0: आपे आप नानक प्रभु सोए
1: कई कोट पावन के दास
0: तीनो बतातम प्रकाश
1: कई कोट तत्व के वेते
0: सदा निहारे को नेत्रे
1: कई कोट नाम रस पीवे
0: अमृत

0: बिकराल
1: कहूं सबके होत रवाल
0: कहूं होए वह बटराजा
1: कबू भिखारी नीच का साजा
0: कहूं अकीर्त में आवे
1: कबू पला पला कहावे
0: जब राखे तभी रहे
1: गुर प्रसाद नानक सच कहे
0: कबू होए पणत करे मखियान
1: कबू मोहन तारी लावे ध्यान
0: कबू तरती सजनान
1: कबू सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: कबू कीट हास तंग होए जिया
1: अनेक जोन पर मैं परमिया
0: नाना रोजन स्वागी दिखावे
1: जो प्रभावे

0: संत के दुखन आर जा कटे,
1: संत के दुखन जानते नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीना,
1: संत के दुखन सो बाते हीना,
0: संत के हते को रखे न कोई,
1: संत के दुखन थान प्रश्न होए,
0: संत कृपाल कृपा जी करे,
1: नानक संत संग निंदक भी तरे,
0: संत के दुखन

0: संतन के दुखन काब ज्यों लवे,
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिगत जोन के माए,
1: संतन के दुखन तृष्णा में जला,
0: संत के दुखन सब को छले।

0: संत का निंदक खिंटे का ना पाई,
1: संत का निंदक मा अत्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा,
1: संत का निंदक राय ते हीना,
0: संत का निंदक दुखियार दीना,
1: संत के निंदक को सर्व रोगा,
0: संत के निंदक को सदा बिजोगा,
1: संत की निंदा दुख में दोखा,
0: संत पावे ता उसका भी होए मोका,
1: संत का दुखी सदा पवेता,
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
1: संत के दुखी को डान लागे,
0: संत के दुखी को सब त्यागे,
1: संत का दुखी अहंकारी,
0: संत का दुखी सदा भिखारी,
1: संत का दुखी जन्मे मरे,
0: संत की दुख ना सुख ते डरे,
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
0: नानक संत पावे ता लय मिलाए,
1: संत का दुखी अद बीते टूटे,
0: संत का दुखी किसे काज ना पहुंचे,
1: संत के दुखी को ध्यान परमाइये,
0: संत का दुखी उजड़ पाइये,
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: सांस बिना मिलकर के लोथा,
1: संत के दुखी

0: मिल लाइए
1: जल बिहुन मछली तड़फड़ाए
0: सदका दुखी भूखा नहीं राजा
1: जो पाव की धन नहीं प्रापे
0: सदका दुखी छुटे अकेला
1: जो बुहार तिल खेत माए दुहेला
0: सदका दुखी धर्म ते रहत
1: सदका दुखी सद मिथ्या कहत
0: कीर्त निंदका तुर ही पया
1: नानक जो तिस पावे सोई थिया
0: सदका दुखी बिगड़ रूप हो जाए
1: सदका दुखी को दर के मिले सजाए
0: सदका दुखी सदा सहकाइए
1: सदका दुखी ना मरे ना जीवा
0: संत के दुखी की पुजै ना आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख ना तिस्टै कोई
1: जैसा पावे तैसा कोई होए
0: पया कितना मिटे कोई
1: नानक जाने साचा सोए
0: सब गट तिसके ओ कन्ने हारा
1: सदा तिसको नमस्कार
0: प्रभु की उहतत करहो दिन रात
1: इसे त्या वो सास गिरास
0: सब कुछ वर्ता तिसका किया
1: जैसा करे तैसा

0: मानो की टेक वृद्धि सब जान
1: भगवान
0: इसके दिए रहे अगाए मारे राखे को आप इसका हुक्म बूझ सुख होए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए उस्तत मन में कर्ण निरंकार
1: मेरे साथ व्यवहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा कर ले जियो
0: नैनो पेख ठाकर कारंग
1: संग बिन सब संग
0: ज्ञान जलो मार्ग गोविंद
1: पाप जब ये हर बिंद
0: कर्म हर कर हर कर्म श्रवण हर कथा
1: हर के नानक उजल मथा
0: बड़भागी ते जन जग माहे
1: सदा हर के गुण गाए
0: राम नाम जो करे विचार
1: धनवंत गणे संसार
0: मंत्र मुख बोलो हर मुखी
1: सदा सदा जानो ते सुखी
0: एको एक एक पछान नाम संग जिसका मन मान्या
1: नानक तिने निरंजन जानिया
0: गुरु प्रसाद अपन आप सुजय
1: जानो तृष्णा बुझे
0: साध संग हर हर जस कह तो
1: हर जन रह
0: अंधन कीर्त केवल बखियान
1: व्यस्त में सोई निर्वाण
0: एक ऊपर जिस जन की आशा
1: इसकी कटिए जम की फासा
0: पाप राम की जिस मन भूख
1: किसे न लागे दुख
0: जिसको हव प्रभ मन चित आवे
1: संत सहेला नहीं डुलावे
0: जिसको अपना कृपा करे
1: सो सेवक को किसते डरे
0: जैसा सत तैसा दिष्टाया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजया
1: गुर प्रसाद तत सब बुझया
0: जब देखो तब सब किस मूल
1: नानक सो सुखम सोई असूल
0: नह किस जन्मे नह किस मरे
1: पंचायत आप ही करे
0: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: आपे आप सगल में आप
1: चुगत रखा उठाप
0: अवनासी नाही किस खंड
1: तारण तारे हो ब्रह्मंड
0: अलख अपेव पुरख प्रताप
1: जपाए ता नानक जाप
0: ये जो जाता सु शोभावंत
1: संसार उदरे तिन मंत
0: क्योंकि सेवक सगल धारण
1: आपके सेवक दुख बिसारण
0: आपे मेल ले कृपाल
1: का सब जपाए निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागे
1: जिसनों कृपा करे बड़ पागे
0: नाम जवत पावे विश्राम
1: नानक तिन पुरख को उत्तम करमान
0: जो कुछ करे सुप्रभ कह रंग
1: सदा सदा से हर संग
0: सहज सुपाए होए सो होए
1: परनेहार पछाने सोए
0: सबका किया जन मीठ लगाना
1: जैसा सा तैसा दृष्टाना
0: जिस ते उपजे तिस माहे समाए
1: सुख निहान

0: ठाकर के सेवक के मन प्रतीता,
1: ठाकर के सेवक की निर्मल रीत,
0: ठाकर को सेवक जाने संग,
1: आपका सेवक नाम के रंग,
0: सेवक को प्रभु पालन हारा,
1: सेवक की राखे निरंकार,
0: सो सेवक जिस दया प्रभु तारे,
1: नानक सो सेवक सास सास मारे,
0: अपने जन का पर्दा ढाके,
1: अपने सेवक की सर पर राखे।

0: दुर्मत माल हिरा
1: गुरबचनी हर नाम मुचरा
0: सतगुरु सिख के बंधन काटे
1: गुर का सिख बिकार ते हटे
0: सतगुरु सिख को नाम धन दे
1: गुर का सिख बड़ पागी है
0: सतगुरु सिख का हालत पलत सवार
1: नानक सतगुरु सिख को जी नाल सहारे
0: गुर के ग्रह सेवक जो रहे
1: गुर की आज्ञा मन में सह
0: आस को कर कष्ट न जनावे
1: हर हर नाम हृदय सत्यावे।

0: मन मन
1: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
0: तो सतगुर जिस हृदय हर नाओ
1: अनेक बार गुरु को बल जाओ
0: सर्वदान जी का दाता
1: आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता
0: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
1: एक आप नहीं कछ परम
0: सहस स्यान प्रलय न जाइए
1: नानक ऐसा गुरु बड़ पागी पाइए
0: सफल दर्शन पे खत पनीत
1: चरण निर्मल

0: साधना की मांगो तूरा
1: ब्रह्मिर सदा पूरा
0: सदा सदा प्रभु के गुण गावो
1: सास प्रभु तुम्हें त्यागो
0: चन कमल से लागे प्रीत
1: करो प्रभु की नित नीत
0: एक ओट एको आधार
1: नाग मांगे नाम प्रभु सार
0: प्रभु की दित महा सुख होए
1: परस पावे बिरला कोए
0: जिन जाख्या से जानते बताने
1: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने
0: तो पर परे प्रेम रस रंग
1: उपजे चाव साध के संग
0: परे सन आन सब त्याग
1: प्रकाश अंधेर ले बलाग
0: भागी जपिया प्रभु सोई
1: नानक नाम रते सुख होए
0: सेव की मनसा पूरी भई
1: सतगुरु ते निर्मल मत लई
0: जिनको प्रभु होयो दयाल
1: सेव की नो सदा निहाल
0: बदन काट मुक्त जन भया
1: जन मरण दुख परम गया
0: इस गुनी श्रद्धा सब पूरी
1: रव रया सर संग हजूरी
0: इसका साथ लिया हम लाए
1: नानक भक्ति नाम समाए
0: सो क्यों विसरे जे काल न पाने
1: सो क्यों विसरे जे जी आ जा
0: सोके विसर्जन सब किश दिया
1: सोको विसर्जे जीवन जिया
0: सोके विसर्जे अगर महराख है
1: प्रसाद को बिरला लाख
0: सोको विसर्जे बिकते काट है
1: जन्म जन्म का टूटा काट है
0: गुर पूरे तत एह बजाया
1: प्रभु प्राण नानक जन के आया
0: साजन संत करे हो इहो काम
1: नाम त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो
1: आप जपो अवरे नाम जपाओ
0: भक्त पाए तरिये संसार
1: बिन भक्ति तन हो सिसार
0: सर्व कल्याण सुख निद नाम
1: उड़ जा पाए विश्राम
0: सगल दोका होत नाश
1: नानक नाम जपो गुणतास
0: उजी प्रीत प्रेम रस चाओ
1: मन तन अंतरे स्वाओ
0: नेत्रो पेख दर सुख होए
1: मन भिक्षे सार चरण तोए
0: भक्त जना के मन तन रंग
1: बेला को पावे संग
0: एक बस दीजे कर मया
1: गुर प्रसाद नाम जप लिया
0: ताकि उपमा कही न जाए
1: नानक रहे सर्व समाए
0: प्रभु बख्शंद दीन दयाल
1: वचन सदा कृपाल
0: नाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्वघटा करत प्रतिपाल
0: आद पुरख कारण करतार
1: भजना के प्राण आधार
0: जो जो जपे सो होए पुनीत
1: प्रभु पाए लावे मन हीत
0: हम निगण यार नीच जान
1: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक मुख हर के गुण गाए
0: अनक राज भोग बढ़ियाई
1: हर के नाम की कथा मन पाए
0: बहु भोजन का पर संगीत
1: रसना जपती हर हर नीत
0: सुखानी शोभा तनवंत
1: हृदय बसे पूर्ण।

0: जब तारी अपन सुन समाद
1: बैर विरोध के संग कमाद
0: जब इसका बन चेह न जापत जब अपन आप बार ब्रह्मा
1: परमा
0: अपन खेल आप वर्तीजा
1: नानक करने हार ना दूजा
0: जब होवत प्रभु केवल तनी
1: जब
0: एक है हर अगम अपार
1: उतार
0: जब निर्गुण प्रभु सहस पाए जब आपे आप अपनी जोत धर
1: कवन डर कवन का डर
0: अपन चल ताप करने हार अविनाशी सुख अपन आसन
1: जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
1: तब जंकी त्रास कहो के सोए
0: जब अवगत गोचर प्रभ एका
1: चित्रगुप्त के पूछक लेखा
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
1: कौन छुटे कौन बंधन बाधे
0: अपन आप ही अचर्जा
1: नानक अपन रूप आप ही उपरजा
0: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: बिन मैल कहो क्या तोता
0: जय निरंजन निंकार निर्वाण
1: कौन कौन मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश जय जो सोपी जो संग समावे
1: किसे पूर्व का मंत्र बितावे
0: कन को रावण करने हारा
1: नानक करते का नहीं समार
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
1: कौन माई बात मित्र सत पाई
0: जय सर्व कला आपे पर बीन
1: वेद कलेव कहाँ को चीन
0: जब अपन आप और तार है
1: तो सगन अब सगन कहाँ विचार
0: है अपन उज अपन आप नेरा
1: कौन आकर कौन कही है चेहरा
0: दुश्मन विस्म रहे विस्माद
1: नानक अपने घर जानो आप
0: जय अशाल छेद अपे समाया
1: इसे व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश
1: उनका ना ही प्रवेश
0: जय एक कह एक एक भगवंता
1: कौन चिंत किस लागे चिंता
0: जय अपन आप तियारा
1: कौन कथे कौन सुनने आरा
0: बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: जय आप रचियो पर पंचाकार
1: गुण में कीनो विस्तार
0: पाप उन्त भई कहावत आल जाल माया जंजाल
1: परम पैपार
0: दुख सुख मान अपमान
1: प्रकार की
0: अपन खेल आप कर देखा
1: संकोचे तो नानक
0: जय अवगत भगत है आप
1: जय पसार संत प्रताप
0: दो पाख का आप है तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बने
0: आपे कौतक करे अंध चो जो
1: रस को जन निर्जोग
0: जिस भाव है तिस आपन नाय

0: विस्तार
1: यादित भाविता से उपाय
0: अपने बाने ले समाए
1: तुमते बिन नहीं किछ होए
0: आपन सूत सब जगत करोए
1: जाको प्रभु आप बुझाए
0: सत नाम सोए जन पाए
1: सो संसंसी तत् कविता
0: नाम सकल श्रेष्ठ का चेता
1: जी यत्र सब ताके हाथ
0: दीन दयाल नाथ को नाथ
1: जिस राखे तिस कोई न मारे
0: सो मुआ जिस मनो

0: दयाल
1: सब ऊपर हो तो कृपाल
0: अपने कर्तव्य जाने आप
1: अंतर जामी रहो व्याप
0: कृपाल जीवन वो भात
1: जो जो रजो सो तिसे त्याग
0: जिस भाव है तिस लय मिलाए
1: भगत करे हर के गुण गाए
0: मन अंतर विश्वास कर मानिया
1: करुण हा नानक एक जानिया
0: जन लागा हरे कह नाए
1: इसकी आस न बिरती जाए
0: सेतु को सेवा बन आए
1: हुकम बूझ परम पद पाए
0: इसते ऊपर नहीं विचार
1: जाके मन बसया निरंकार
0: मंदन तोर पै निर्वैर
1: मंदिन पूजे गुरु के पैर
0: ते लोग सुखिए पर लोग सुहेले
1: नानक हर प्रभ आपे मेले
0: सा संग मिल करो आनंद
1: गुण गाओ प्रभ परमानंद
0: राम नाम तत करो विचार
1: लभे का करो उदार

0: पाते आए
1: निर्भोज जपे सकल भव मिटै
0: राखिर पाते प्राणी छूटै
1: जिसनु राखै तिस नाहि दोख
0: नाम जपत मन होवत सुख
1: पिता जाय मिटे अहंकार
0: तिस जन को कोए न पहुँचन हार
1: सिर ऊपर ठाढ़ गुर सूरा
0: नानक ताके कारज पूरा
1: मत पूरी अमृत जाके दृष्ट
0: दर्शन देखत उदरत श्रेष्ठ
1: जन कमल जाके अनोपा
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: तन सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुरक परदान
1: ये

0: अनंत
1: कर व्याप्रयाप भगवंत
0: धन माहे आकाश पयाल
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल
0: मंथन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: कौन पानी वह संतर माहे
1: चार कुण दिशे समाए
0: इसते पिन नहीं को उठाओ
1: गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमरत में देखा
1: शशिर सूर नक्षत्र में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोला
1: आप डोलना कब मुंह डोले
0: सब कला कर खेल खेल
1: बोलना पाइये गुणे बोला
0: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
1: आर्य स्वामी ओत कोत
0: गुरु प्रसाद परम का नास
1: नानक तिन में यो विशास
0: संत जना का पेखण सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने सो वचन
1: सर्व व्यापी राम संग रचना
0: जिन जाता तिसकी ये रहत
1: सत वचन साधु सब कहते
0: जो जो होय सोय सुख मान
1: करन करावन हार प्रभु जाने
0: अंतर बसे बाहर पियो ही
1: दर्शन देख सब मोही
0: आप सत किया सब सत
1: इस प्राप्ते सगली उत्पत
0: इस भावे ता करे विस्तार
1: इस भावे ता एक ओंकार
0: अंकला लखी नह जाए।

0: आपे खनहारा,
1: सगल समग्री जा का तना,
0: अपन जास आप ही सुना,
1: आवन जान एक खेल बनाया,
0: आज्ञाकारी की नी माया,
1: साते मत अलेप तो रहे,
0: जो किस कहना सो आपे कहे,
1: आज्ञा आवे आज्ञा जाए,
0: नानक जा पावे ता लय समाए,
1: इते होए सो ना ही बरा,
0: उरे कहो किने कछ करा,
1: आप भला कर तो तातने की,
0: आपे जाने अपने जी की,
1: आप साज तारी सब साच,
0: ओत ओत अपन संग राच,
1: ताती गत मत कही न जाए,
0: दूसर होए ता सो जी पाए,
1: इसका किया सब परवान,
0: गुर प्रसाद नानक हो जाने,
1: जो जाने ते सदा सुख होए,
0: आप मिलाए ले प्रभु सोए,
1: ओ तनवंत कलवंत पतवंत,
0: जीवन मुक्त जिसने

0: सुन उपदेश
1: ब्रह्म निकट कर
0: सा सा सिमरह गोबिंद आ संत त्याग तरंग आप छोड़ बेनती करो
1: सागर
0: धन के पर लिहो भंडार
1: नमस्कार
0: कुशल सहज आनंद
1: परमानंद
0: उदार हो जियो
1: गुण गोविंद अमृत रस पियो।

0: निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लगा रंग
1: जय जय शब्द अनाहद वाजै
0: सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै
1: प्रगटे गोपाल महात कै माथे
0: नानक उदरे तिन के साथे
1: सांझ योग सुन सरनिया।